0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए।
1: दे वांट टू डाइवर्ट द इश्यू ऑफ पेपर लीक, चंदा चोरी एंड चाइनीज इंकर्शन ऑन अरुणाचल। दीज आर द इश्यू ऑफ द कंट्री नाउडेज। दे वांट टू डाइवर्ट इट, दैट इज वाई दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। वंदे मातरम वी आर डूइंग फॉर द लास्ट 1937 ऑनवर्ड्स, more than 90 years we are doing this. What is new in it for us?

0: कानूनपुर तोड़ने आए हैं। सीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर गए थे और मीडिया को लेकर गए थे। उन्होंने कल बता दिया था कि सारे मीडिया वाले वहां पहुंच जाएं, शाम को ही बता दिया था। इसीलिए मुझे लग रहा है कि वहां पर हो सकता है कि बीजेपी के समर्थित हो गांव में लोग, क्योंकि वहां कार्यकर्ता तो किसी पार्टी के होते नहीं है, समर्थक ही होते हैं, तो उन्होंने वहां से भगा दिया है उन्हें। वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इलाके एक और स्कूल वाटिका में भी जाने का उन्होंने जाने की घोषणा कर रखी है। तो आप देखिए, राजस्थान में ये स्थिति है कि आप 20,000 स्कूलों में कहीं भी चले जाएं, स्थिति आपको खराब देखने को मिलेगी, और हम लगातार दिखा भी रहे हैं।
1: जी शरद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट इज इनफैक्ट वन थिंग दैट शरद केम आउट टू मेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट यस, रूरल पॉलिटिक्स इन दीज विलेजेस, इन दीज pockets at the grassroots level is very different from what we see in the urban cities. So yes, take a look at these visuals once again to get an idea of what happened in this village in Jaipur when the CJP members arrived to take a look at the primary schools and the condition that it was in. Shifting focus back down south to Andhra Pradesh, it's a sensational case of double murder and a death by suicide. That's, in fact, I beg your pardon, this was not Andhra Pradesh, this was Lucknow. Manas Vajpayee, an SBI bank employee, on Thursday shot his wife Divya Mishra outside her ICICI bank branch in Lucknow's posh Gomti Nagar area. Now, Manas Vajpayee killed his wife Divya Mishra, a relationship manager at ICICI Bank, in the middle of the divorce proceedings between the couple. He fired two shots at his wife outside the ICICI Bank branch in Gomti Nagar. And now, CCTV footage of the crime has surfaced where Manas Vajpayee and Divya had been talking outside the bank when Manas assaulted his wife Divya and suddenly pulled out a gun, fired two shots at her before fleeing from the location. An entire sequence of events has been captured on CCTV camera. And minutes after the shooting outside the bank took place, the accused posted a WhatsApp status. This is the status that we bring to you, the photograph of it, in which he alleged that he's killed his wife because she's allegedly cheated on him. And in fact, some of his friends had come out, people who know him came out to even say that we'd seen this WhatsApp status, we were concerned. But before they could take action on it, it was far too late. According to the reports, Vajpayee appeared completely normal after returning to his neighborhood from the bank. He reportedly spoke to local shopkeepers as well, asked them about their well-being, and then went inside his house, locked the door, and later the bodies of Vajpayee himself and his sister were found outside. It's a shocking case that's coming from Lucknow at this given point. Three lives lost, two in a murder and one in a case of suicide. Take a look at the responses we have.
2: गोमती नगर ICICI बैंक के पास गोली मारी गई थी। उसका पति यहीं रहते थे, उसकी बहन और उसकी जो है यहाँ डेड बॉडी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। प्राथमिक छानबीन में हम लोगों को उसके व्हाट्सएप जो है प्रोफाइल पे स्टेटस था उसको भी देखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुसाइड कर रहे हैं और उसने अपनी वाइफ को गोली मार दिया है। अभी हम लोग सारे एंगल्स पे छानबीन कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं, उनके परिवार जनों से भी बातचीत कर रहे हैं। आज ये घटना या क्या चीज थी जो उसको ट्रिगर किया था, उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं।
3: मैं 12:15 के लगभग गुंडीनगर थाना क्षेत्र में ICICI बैंक के सामने एक गोलीबाजी की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल महिला भी उनको अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। जब इसी पे थोड़ी देर बाद घुसड़िया गुंडीनगर थाना क्षेत्र में घुसड़िया चौराहे से भी एक व्यक्ति के द्वारा गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब वहां पर घटना को अटेंड किया गया तो ये वेरीफाई हुआ कि जो प्रथम जगह जो प्रथम घटना हुई थी उसमें जो महिला को गोली मारी थी उनके पति के द्वारा ही वहां पर अपनी बहन की हत्या करके उसको भी गोली मार दी गई। इनके द्वारा जब वहां पर चेक किया गया तो मृतक जो प्रति है मानव वाजपेयी, उनके व्हाट्सएप स्टेटस भी अपना लगाया हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी सुसाइड को लेते हुए कुछ चीजें एक्सप्लेन की हुई थी।
4: वारदात क्या था, व्हाट्सएप पर मैंने उनका स्टेटस देखा था और स्टेटस पर उनके लिखा हुआ था कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ और मेरी वाइफ चीट कर रही है। तो फिर हम लोग ने उनको कॉल करा, कॉल कर।

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: இந்த பேரவையிலே பேசின நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய டேபிளில் மூன்று ஃபைல்ஸ் இருப்பதாகவும் அந்த ஃபைல்ஸை வந்து அவர் திறந்து பார்க்க வச்சிடாதீங்க அப்படிங்கிற தோணியில் எங்களுடைய அரசை குற்றஞ்சாட்டுகின்ற வகையில் குறிப்பிட்டு பேசியிருக்கிறாரு. அந்த ஃபைல்ஸை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வது தயவு செய்து அவர் திறந்து பார்க்க வேண்டும், அதன் மீது அவர் ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டும். எதற்காக பயப்படுறீங்க, எதற்காக காலம் தாழ்த்துறீங்க, இதையே மூன்று மாசமா சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க. ஜோசியக்காரர் சொன்னாதான் அந்த ஃபைல் திறந்து பார்ப்பீங்களா? நல்ல நேரம் இதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா?
1: Right, so this is Udayanidhi Stalin comment against Chief Minister Vijay. It's an open dare to him in the assembly wherein he says, open the files on your table, don't give us punch dialogues on films. Now, why was this said? Viewers, Vijay had earlier said there are three files, don't force us to open. Vijay said those files contain proof of DMK corruption. And that's the reason why Udayanidhi Stalin is now going after him, saying that you're free to open it. What are these files really about that the Chief Minister was referring to, Apoorva? What more can you tell us?
2: Well, that's right, Sneha. In fact, this discussion that the leader of opposition, Udayanidhi Stalin, has gone ahead and picked up refers to the three files that Chief Minister Vijay has gone ahead and made a statement about in the assembly. In fact, the Chief Minister has, brazenly said that I have three files that the financial department has kept on my table. Don't push me to go ahead and, open these files is what the Chief Minister had gone ahead and stated. Questioning on the same, you have the DMK senior leader and leader of opposition Udayanidhi Stalin going ahead and challenging the Chief Minister, saying that yes, you claim that you have three files sitting at your desk, why are you waiting for so long to open these three files? We are not afraid of anything is what Udayanidhi Stalin has gone ahead and questioned at the Chief Minister. Not only that, he's also taking a jibe at the Chief Minister, saying, are you waiting for Shubh Muhurat? Are you waiting for a good time to open these files? Are you waiting for your astrologer to go ahead and give a good time for you to open these files? Why are you afraid is the question that has been posed by Leader of Opposition Udayanidhi Stalin at the TVK government and more importantly at Chief Minister Vijay.
1: Be with us. I'm just going to come back to you in a moment from now, Apoorva, with the very latest of those details. Now, this is what Udayanidhi said. Don't give us these punchy dialogues. Open the files if you wish to. Now, this in the context of what the Chief Minister had said earlier on the three files on his table.
3: ஆதாரம் ஆதாரம்னு கேட்குறாங்க. ஒரு ஒன் வீக் பேக் மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் பேசும்போது ஒரு மூணு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ரிவ்யூ பண்ணி அந்த ஃபைல்ஸ்லாம் என் டேபிளில் இருக்குன்னு சொன்னார். அது ஏதோ போகிற போக்கில் அவர் சொல்லலை, உண்மையிலேயே என் டேபிளில் இருக்கு. அத்தனையும் ப்ரூஃபோடு இருக்கு, ஓபன் பண்ண வச்சிடாதீங்க. எப்போ ஓபன் பண்ணணுமோ அப்போ கரெக்டா எல்லாமே ஓபன் ஆகும்.
1: Apoorva continues to be with us. Apoorva, the back and forth and the war of words really between Udayanidhi and Vijay continues, isn't it? Given that Vijay, often the Chief Minister has been seen within the assembly speaking in a way which the DMK has been saying is rather boorish.
2: Well, that's right. In fact, you see the kind of statements that are coming in, in the assembly session. This time alone, we saw MLAs breaking into a song. We saw cinema dialogues that were being, taken forth by, the Chief Minister and several other MLAs and ministers as well. When it comes to the kind of interaction during the question hour that takes place between the TVK government and the other MLAs in the Tamil Nadu assembly. And speaking on this line as well is what we can see Udayanidhi Stalin going ahead and saying. In fact, he's taking a jibe at the songs that have been broken out too many times in the Tamil Nadu Assembly, where he says, we don't even know if this is the Tamil Nadu Assembly anymore, or rather, is it a super singer competition that is taking place here in the Tamil Nadu Assembly, is what Udayanidhi Stalin has gone ahead and criticized. He says, these kind of songs, yes, the speaker says that it needs to be removed from the live, telecast that is being done of the Tamil Nadu Assembly. But then we see these kind of, videos going viral on social media recently. deals that are being cut out, and then it's trending on social media. The speaker says one thing, but on social media we see a totally different thing as well. Is this how is the decorum of and the sanctity of the Tamil Nadu Assembly is being besmirched, is what you can see Uthanidhi Stalin, the leader of opposition and DMK senior leader, going ahead and commenting on as well. Time and time again, Sneha, this Tamil Nadu Assembly has seen speeches that are taking place, strongly worded speeches, and a battle of words between Tamil Nadu Chief Minister Joseph C. Vijay and leader of opposition Uthanidhi Stalin take place, and this is one such exchange that we can see taking place. Chief Minister Vijay going ahead and saying, listen, I have 3 files on my desk, don't push me to go ahead and release them and start an investigation. Meanwhile, Uthanidhi Stalin, the leader of opposition, going ahead and challenging the same of Chief Minister Vijay, saying, are you looking for a Shubh Muhurat? Why are you afraid to open these files? Because we are not afraid of whatever is on your desk.
1: Well, absolutely. I also want to understand from you, and this is something that the Chief Minister said yesterday also, that this is going to happen at an appropriate time. So what are you learning really even within the government? What are the kind of allegations that the DMK is facing now? And the DMK is corrupt as an allegation that has been made by Vijay even during the course of the election campaign, isn't it? But what is it that you're learning on the kind of charges that perhaps the DMK and the ministers, the former ministers, are facing?
2: But in fact, no, this is a rhetoric that has been set by the TVK. Like you rightly mentioned, the TVK government, the leaders, including Chief Minister Vijay, have been, even before elections, going on and talking about how the DMK is corrupt, and there has been deep-rooted corruption in the DMK government there as well. And even the finance minister, Justice, a couple of days earlier as well, saying that there will be white papers that will be released in the Tamil Nadu Assembly and for the public to see what is the kind of corruption that has taken place during the DMK. And this very point that has been made has been reiterated by the Chief Minister Vijay there as well, wherein he says, I have 3 files waiting on my desk, don't push me to go ahead and open these files. These are files relating to corruption, is what the Chief Minister has also charged at the DMK there. But the DMK, remaining unbothered by these kind of allegations, wherein Uthanidhi Stalin, the leader of opposition, going ahead and throwing an open challenge to Chief Minister Vijay and the TVK government, saying, listen, we are not afraid of all of this tattletale and the kind of challenges that you are throwing. If you say there is corruption, go ahead, make it open to the public. We are confident that we will emerge unscathed and that there is no corruption that we have done, is the charges that Uthanidhi Stalin, the leader of opposition, has hit back at the Tamilaga Vetrikaragam government.
1: All right, Purva, with the very latest on that story, I'm going to thank you for the moment. This again is a controversy, isn't dying anytime soon. It's a rhetoric on the part of the TVK. Is also what Purva is telling us. The DMK is corrupt. The files would be opened, is the warning there from the Chief Minister. Uthanidhi says, stop giving us filmy dialogues in the Assembly. News coming in from Jaipur at this point in time, where there has been an attack on CJP activist here. CJP spokesperson thrown to the ground and beaten, villagers smashed the vehicle windows. Several activists also sustained many injuries. Ashutosh Ranka alleges violence at the behest of the Rajasthan minister Madan Dilawar, threatens protest against Madan Dilawar if action is not taken within 48 hours. Let's take a look.
4: जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष रांका यहां पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और रांका सहित पूरी टीम यहां पर मौके पर पहुंची है, और दोनों तरफ यहां पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष आगे के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहां पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में, और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं, ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है, और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं।
1: I'm going straight across to Sharat for more details on that story. Sharat, kya hua yahan par aur is samay situation kaisa hai, details bataye.
5: देखिए अभी स्नेहा गांव में शांति है और लोग जो जो आशुतोष रावता थे वहां से चले गए हैं, मगर जिस तरह से गुंडागर्दी हुई है ये निश्चित रूप से बिल्कुल निंदनीय है। हिंसा का कोई जगह होनी नहीं चाहिए और ये तो मैं सरकार का फेल्योर मानता हूँ स्नेहा की, इसलिए कि दोनों तरफ से तनातनी चल रही थी। कल शाम को इन्होंने कह दिया था कि हम गांव में जाएंगे, गांव वालों ने कहा था कि आप मत आइए, हमारी स्कूल है, हम व्यवस्था सुधारेंगे। ये सुबह गए, सुबह इनको लौटा दिया गया था, मगर वहां पर चूंकि मीडिया को लेकर ये गए थे तो आशुतोष राका ने फिर लिखा कि मैं फिर आ रहा हूँ। इस बार वो महिलाओं को लेकर गए थे, उन्होंने फिर कहा कि आओगे तो हम पीटेंगे। इतना सब कुछ चल रहा है, कोई अचानक से हुआ हमला नहीं है, पूरी तरह से दोनों तरफ से ये तैयारी करके गए हैं कि वो हमें पीटेंगे, हम मीडिया पर आएंगे, इसका कहना था कि हम पीटेंगे। इसके बावजूद सरकार सोई रही, सरकार का फेल्योर है, पुलिस का फेल्योर है कि अगर इस तरह से दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि मैं तो जाऊंगा ही, दूसरा कह रहा है मैं पीटूंगा ही, उसके बावजूद पुलिस सोई रही। और पुलिस अगर वहां पर रहती तो इन्हें समय रहते रोक लिया जाता, वो गांव में नहीं जाते, गांव में पिटाई नहीं होती। अब ये खोजने का मतलब नहीं है कि कौन बीजेपी से जुड़ा है, कौन कांग्रेस से जुड़ा है। गांव में अगर एक भी व्यक्ति आपके साथ नहीं है तो उन्हें साथ में लेना चाहिए था सीजेपी को भी। हिंसा जो हुई है निश्चित रूप से पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, किसी को भी इस तरह से घायल करने का, हाथ उठाने का, मारपीट करने का अधिकार नहीं है। मगर ये जिस तरह से ये काम हुआ है, ये कल से ये सारा चल रहा था, उसके बावजूद भी मेरा मानना है कि ये पुलिस का फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं को अगर गांव में वहां विरोध था कि हम नहीं घुसने देंगे तो उन्हें रोका जाना चाहिए था। इस दृश्य को अवॉइड किया जा सकता था अगर सरकार चाहती तो, मगर पुलिस चाहती तो, मगर पुलिस की नाकामी की वजह से, सरकार की नाकामी की वजह से ये घटना हुई है जो निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली है। ये स्कूल कोई पहली बार नहीं है, बहुत बार हम लोग भी दिखा चुके हैं और सीजेपी के कार्यकर्ताओं से जाने से रातों रात बदल नहीं जाता। शिक्षा विभाग का कहना है कि 20,000 ऐसे स्कूलें हैं जो विरासत में मिली हैं, मगर सीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी वहां जाना था मीडिया को लेकर, और गांव वालों का कहना था कि वह राजनीति करने आ रहे हैं, जिसकी परिणति हिंसा में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। ये गलत हुआ है और पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि आशुतोष राका अब चेतावनी दे रहे हैं कि 48 घंटे में अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो वो वापस से आंदोलन करेंगे और मदन दिलावर पर आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के कहने पर ये सब कुछ हुआ है।
1: शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शरद विद द वेरी लेटेस्ट ऑन दैट स्टोरी टेलिंग अस अबाउट दिस डेवलपमेंट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। द सिचुएशन राइट नाउ अंडर कंट्रोल, बट दिस इज अ सीजीपी स्पोक्सपर्सन हु वाज अटैक्ड, हेकल्ड एंड नॉट जस्ट हेकल्ड, ही वाज अटैक्ड फिजिकली असॉल्टेड एज वेल। It's time for a quick break here. On the other side, it's Kangana versus veteran actor Sharmila Tagore over Vande Mataram. Sharmila backs the two stanza Vande rendition. Kangana hits back at the veteran actor. Details in just a bit.

0: कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए।
1: दे वांट टू डाइवर्ट द इश्यू ऑफ पेपर लीक, चंदा चोरी एंड चाइनीज इंकर्शन ऑन अरुणाचल। दीज आर द इश्यू ऑफ द कंट्री नाउडेज। दे वांट टू डाइवर्ट इट, दैट इज वाई दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। वंदे मातरम वी आर डूइंग फॉर द लास्ट 1937 ऑनवर्ड्स, more than 90 years we are doing this. What is new in it for us?
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: जो करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: IR is registered. According to Delhi police sources, the complaint submitted by Sahil, who was accompanied by Rahul Gandhi, has been accepted. Police officials have informed him that the matter is already under consideration before the court.
1: 20 July ko pellet gun ka prayog hua. Uska saboot kya hai? Saboot ye hai, dekhiye. Ye hai pellets. Dekh lijiye inko. Achhi tarah dekh lijiye. Ye dekhiye. Ye hai pellets. Ye kahan se aaye? Ye inke shareer se aaye. Dikhao. Ye inke yahan lage charre. 200 charre inke shareer ke andar hai. 3 charre इनके आंख में है. एम्स की एरी जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे. मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए. हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए. अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है. जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं.
2: 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस. दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए. उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए. हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए. वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि एस एच ओ साहब आ रहे हैं. एस एच ओ साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पर बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप डीसीपी क्राइम ब्रांच आदिपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी. और उसके मेरे उनके साथ,
1: और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं ऊपर से ऑर्डर आया है.
2: पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे डीसीपी क्राइम ब्रांच गए, वहाँ एसीपी उमेश भारद्वाज से भी मिले. उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती. आई सेड सर मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन, तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है. पाया तो अभी तक नहीं, अब कंप्लेंट एलओपी के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला, एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं हो रही
3: है. उसके पास ही जो दूसरा थाना है, फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा. फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं था. बोले क्राइम ब्रांच वहाँ पे भी गई थी, वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे.
2: हमने पोस्ट किया कंप्लेंट सो दैट द कंप्लेंट इज एक्नॉलेज्ड एटलीस्ट. देन वी ईमेल्ड टू डीसीपी क्राइम ब्रांच, डीसीपी दिल्ली पुलिस, डीसीपी सॉरी एसएचओ कैनॉट प्लेस, 3 पीपल पोस्टेड, ईमेल्ड, एवरीथिंग. वी हैव अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग. And still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us one thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last 10-16 days.
1: किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे. इसकी आँख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया. अगर पता लगा किसने किया, आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर एफआईआर तो होना चाहिए, ये इंडियन सिटीजन है.
4: ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं. अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के. तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी. जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे.
5: खाकी का समुंदर, एक नीला समुंदर यहाँ पे थाने के भीतर इस तरीके से स्टैंड बाय पर आरएएफ बहुत कम ही रहती है, उनकी टुकड़ी बाहर रहती है, बसों में रहते हैं और ज़्यादातर धरना होता है तो सड़कों पर होता है। इस तरीके से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर जिस तरीके से कुर्सी लगा के राहुल गांधी, अब कुर्सी भी दिल्ली पुलिस ने ही दिलाई होगी, कुर्सी लगा के राहुल गांधी और उनके साथ साहिल लोचा बैठ गए हैं, दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। ऊपर से तमाम मीडिया जो है वो कवरेज कर रही है, तो एक तरीके से कार्रवाई को लेके जो सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी, ये एक बड़ा दबाव दिल्ली पुलिस पर डाल रहे हैं। और आप देखिए कि बहुत जल्द ही दिल्ली पुलिस ने कहा कि आयोग का ये नंबर है, ये पड़ताल हो रही है, मामला अभी टाइम लगेगा, लेकिन 14-17-2 तारीख को साहिल लोचप जाते हैं, उनको जवाब नहीं मिलता, तो राहुल गांधी को वो ट्रिगर पॉइंट मिल गया कि दिल्ली पुलिस, क्योंकि आरोप उस पर है, राहुल गांधी के मुताबिक दोष उस पर है, इसलिए इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। और साहिल लोचप की जो स्थिति है, चश्मा पहने बैठे हैं, चोटें उनकी अभी भी नजर आ रही हैं, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी मोदी सरकार की कार्रवाई पर भी चोट करने की कोशिश।
0: And I'm being joined by the reporters who are covering this entire issue on the ground. Arvind Oja joins me on this story. Arvind, police keh rahi hai ke complaint le li gayi hai, complaint par kaam ho raha hai, lekin ye matter sub judice hai. Supreme Court ke saamne PIL hai, haan, Supreme Court ne ek high power committee bhi bana di hai sabko dekhne ke liye, lekin FIR register kyun nahi hui hai abhi tak, ye sawal hai Arvind.
6: किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, यही जानना चाहती है फिलहाल पुलिस, और पुलिस इसी को लेकर इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उनको तमाम तरह के जो वेपन मिलते हैं, चाहे वो लाठी डंडा हो या फिर वाटर कैनन हो, टीयर गैस की सेल हो, पैलेट गन हो, रबर गन हो, इवन जो सोफिस्टिकेटेड वेपन होते हैं उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको बताया गया होता है। यहाँ मुद्दा 20 जुलाई के बाद पैलेट गन का हुआ कि पैलेट गन का इस्तेमाल पीसफुल प्रोटेस्ट में क्यों हुआ, तो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था, ये 20 जुलाई को बात सामने आ गई दोनों तरफ से, चाहे पुलिस की तरफ से भी लाठी चार्ज हुआ और जो प्रोटेस्टर थे उनकी तरफ से बैरिकेड्स तोड़े गए, स्टोन पिल्टिंग हुई, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। अब इस पूरे मामले पर जो राहुल गांधी का यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पर दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि राहुल गांधी के साथ जो साहिल आए थे उनकी शिकायत ले ली गई है, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, यहां तक कि जो पैलेट गन का मुद्दा है वो भी सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में है। 20 जुलाई को जो एफआईआर दर्ज हुई थी उस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है, तो साहिल जो कहना चाहते हैं उसकी भी इंक्वायरी हो रही है, जो पहले से एफआईआर दर्ज है, जो एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत बनाई गई है, वो कमेटी इन्हीं सब चीजों की जांच कर रही है कि पुलिस का रवैया कैसा था, क्या पुलिस ने एसओपी को फॉलो किया नहीं किया, प्रोटेस्टर की तरफ से क्या आया था, दिल्ली पुलिस का कहना था क्रिमिनल एलिमेंट्स भी आए थे, उनका क्या रोल था, इन सब तमाम चीजों को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। राहुल गांधी के साथ जो विक्टिम आए थे उनकी भी कंप्लेन दिल्ली पुलिस ने ले ली है, उसकी भी इंक्वायरी की जा रही है, लेकिन अब राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं और अब बीजेपी और बाकी लोग ये कह रहे हैं
0: कि जब राहुल गांधी और विक्टिम के वकील ये कह रहे हैं कि कंप्लेंट ले ही नहीं जा रही, एक रिसीविंग लेने के लिए इनको इधर से उधर भगाया जा रहा है, तो क्या पुलिस का काम नहीं है कि अगर कोई कंप्लेंट लेकर आया तो कम से कम उसकी रिसीविंग तो दे दें? दूसरा सवाल ये कि दिल्ली पुलिस की मैनुअल में ग्रेडेड फोर्स रिस्पॉन्स तो है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हाँ रूल्स अलाउ कर रहे हैं, परमिशन है पुलिस को पैलेट गन तक भी इस्तेमाल करने की, लेकिन रूल्स में ही ये भी है कि आप इंसान को टारगेट करके पैलेट गन नहीं मार सकते, आपको जहां तक हो सके जमीन या कम से कम वेस्ट से नीचे टारगेटिंग करनी है, चाहे वो पैलेट गन हो चाहे वो रबर बुलेट की हो, तो जब वो रूल्स भी तोड़े गए हैं तो उस पर पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है?
6: अनीसा आप भी जानती हैं, काफी वक्त से सुप्रीम कोर्ट कवर करती हैं और लीगल मैटर्स को भी आपने देखा है, अगर कोई फोर्स आती है, अगर पैलेट गन जैसा आरोप लगाया जा रहा है पैलेट गन का इस्तेमाल, और ये अधिकार है फोर्सेस को स्थितियों को देखते हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट में अचानक से गोली पुलिस जाकर नहीं चला सकती या लाठी का चार्ज नहीं कर सकती, पैलेट गन अगर चला है जो जो कि जनरल डायरी में बकायदा रजिस्टर्ड भी हुआ है पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के, तो उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, उसकी खुद की जो जो फोर्सेस होती है उसकी इंक्वायरी करती है। जो जवान अगर चलाया होता इस तरह का वेपन, उससे पूछा जाता है आपकी क्या स्थिति, की किन परिस्थितियों में चलाया जाता है, उसके बाद फिर आगे का लीगल एक्शन होता है। जो FIR जो 20 जुलाई का एक्शन हुआ था उसपे अलग अलग मल्टीपल FIR दर्ज है। उस FIR में ये भी जिक्र है कि कुछ प्रोटेस्टर थे उनको चोट आई, कुछ पुलिसकर्मी थे उनको चोट आई, ये सारा जिक्र है उसमें। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें पैलेट गन वाला भी मामला है, पैलेट गन का भी मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना रही है, उसकी इंक्वायरी में जो फैक्ट फाइंडिंग है वो सामने आ जाएगी, तो दिल्ली पुलिस ने यही बात राहुल गांधी को भी समझा दी है। लेकिन इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। राहुल गांधी पहले
0: बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद ओझा, पॉइंटिंग आउट दैट द पुलिस इज डूइंग इट्स जॉब एंड नाउ it has become political. And on the political aspect of it, we'll go back to Rahul Gautam, who's joining us from outside the Parliament Street Police Station. Rahul, the BJP is claiming that the Congress is unnecessarily politicizing the matter. They're also claiming that Rahul Gandhi and the Congress is trying to create anarchy. What more can you tell us about what's happening there at the Parliament Street Police Station, and what are the cops really saying?
7: Well, I posed this straight question to Congress MP Mr. Mukul Vasnik, that BJP is alleging that you're trying to create unrest and chaos in the country, to which he categorically rejected all these allegations, saying that our job is to not create any sort of unrest in the country, but to question the government on people issues. And that's what Rahul Gandhi is doing. He's seeking accountability from Union Home Minister, from NDA government, on what had happened on 20th of July in and around Jantar Mantar. He's also seeking as to what action you have taken in this regard. And he is repeatedly asking about one thing, that as to who actually authorized the usage of pellet guns that fateful day. And also, if Union Home Minister was aware about it or not. So clearly, it's a part of a larger political messaging of Congress Party to indict the government, to drag the senior ministers in this entire controversy. We all know that how Dharmendra Pradhan has already been removed. Rahul Gandhi had been seeking his resignation earlier. Now, the goalpost has been shifted, and the new target of the opposition is Union Home Minister Amit Shah. And that's why we are seeing repeated and consistent attacks on him. And we have seen that in the parliament as well, when Rahul Gandhi questioned as to why he is not coming inside the parliament and giving or making a statement in this regard. So expect that this is going to become a major flashpoint between BJP and Congress, given the fact that it is quite unprecedented that a LOP Lok Sabha is holding a dharna outside DCP office.
0: Well, thank you very much for that perspective, Rahul Gautam, pointing out very clearly that this is going to remain a political flashpoint. And India Today will be bringing you a 360-degree view of this entire controversy, whether it's from BJP, the Congress, the protesters or the police. But right now, it's time for me to take a very short break. My colleague Jessica will be bringing you more news and updates on the other side. Keep watching India Today.

0: are watching India Today.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for tuning in to the 4 p.m. Bulletin. I'm Pooja Shali. The top story is coming in about Rahul Gandhi's new theatrics strategy to corner the government. We'll go across to that big story first, the headlines. Rahul Gandhi staging a dharna even still outside Delhi DCP office with pellet gun victim Locha, demanding registration of an FIR on the use of pellet guns. BJP jumping in to slam Rahul Gandhi. What they are calling is a politics of anarchy. Dravida Munnetra-Kazhagam rejecting new cars by Tamil Nadu government for the MLAs. Says don't need vehicles by Tamil Nadu government for MLAs. TVK minister asserting cars not a luxury but a necessity. In other news, look at the shocker. Andhra Pradesh's member of parliament's son mows down a woman in Hyderabad and decides to flee. The speeding Aston Martin driver rams into a 26-year-old woman who has lost her life. This is Janasena member of parliament's son who has been booked. Breath analyzer test conducted on the son. This is a shocker that will break your heart. An LKG student, all of 6 years of age, from Andhra Pradesh, died, collapsed on the teachers, on the teacher after she continued to humiliate him, slap him, unbuttoning his shirt. Pranay Teja, seen on camera, repeatedly pleading and crying, eventually lost his life. Protests breaking out from the parents. BJP stages a stir in Karnataka Assembly against the Minister Nagendra, claims Karnataka Minister Nagendra is corrupt, demanding his resignation. Kangana versus veteran actor Sharmila Tagore over the Vande Mataram. Sharmila Tagore backs two stanza Vande rendition. Says Vande Kali, Vande Durga, difficult for those who backed one god. Kangana Ranaut hits back at the veteran actor, says Sharmila's views on art are limiting and contrived. Another story of this bulletin is coming in from National Capital Delhi. In fact, heart of the National Capital Delhi. And that is in Central Delhi, where Rahul Gandhi, the leader of opposition, with fellow MP and his sister Priyanka Gandhi Vadra, have been protesting. Look at that. They are still on the ground. Full-on theatrics, high-voltage drama. This was the second time such a protest has been organized by Rahul Gandhi. Earlier one, remember, on 21st July, was right outside Parliament, Prime Minister's residence, 7 LKM. He's now been sitting on this dharna for over 3 hours. Alongside the man wearing the black shades is Lochab. He's a teenager, 19 years of age. The claims are that he's been hit by the pellet gun that was used during that protest at Jantar Mantar by the police, by the RAF. And he's now demanding an FIR to be filed on that. Rahul Gautam is joining me for the latest on that. Rahul, what is the latest? If you can show us around, is he still seated? Where's Priyanka Gandhi Vadra? What is the reason? Why is he not moving away? Amit Bhardwaj also continues to be with us. Amit, I'll come to you if you can hear me. Yes. Amit, what is the situation like? Clearly looks like a lot of Congress workers also have congregated.
2: Pooja, there are two aspects of the protest going on. One inside the Parliament Street police station where Rahul Gandhi, along with the lawyers and Sahil, is inside. But outside, these are the Congress Party workers who are sitting on dharna, supporting their neta. The graffitis are also being written on the street seeking resignation of Home Minister. And all of this started more than 4 hours back when Rahul Gandhi took everybody by surprise. He came here with the family members of Sahil and demanded that FIR should be lost into the pellet gun that was fired. And these are the IYC workers who are now sloganering right outside the police station, demanding that FIR should be lost. आपके नेता अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एफआईआर की डिमांड कर रहे हैं, बाहर आप लोग ग्राफिटीज लिख रहे हैं, तो क्या सॉलिडारिटी में आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक एलओपी बाहर नहीं आते?
3: कोई नाजायज मांग नहीं है, एक बड़ी जायज सी बात है, एक बच्चे की आंख गई, आप उस बच्चे के शिकायत पर कार्रवाई करो, एफआईआर दर्ज करो, बीएनएस में एफआईआर जैसी दर्ज करोगे आईओ का नेम फोन नंबर आ जाएगा। 17 बार उस बच्चे ने और हमारे वकील जनों ने गुहार लगाई, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। नेता विपक्ष प्रियंका गांधी जी, बीसीओ सांसद यहां पर आ रखे सिर्फ एक जायज मांग को लेकर। आज सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट ने भी और उस कमेटी ने भी इस बात का जिक्र किया कि भैया अगर यहां पे बच्चों के खिलाफ भी वायलेंस हुआ है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमारी दो टूक की मांग है, एक बच्चे की आग गई है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। इस पुलिस थाने के अंदर डीसीपी ऑफिस है, इसके पीछे पुलिस का हेडक्वार्टर है, विक्टिम यहाँ पर खुद मौजूद है, फैमिली मौजूद है, वकील मौजूद है।
2: विल आल्सो शो यू द विजुअल्स ऑफ पूजा, व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड द पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। दीज आर द आईवाईसी वर्कर्स रेजिंग स्लोगन्स एंड राइट बिहाइंड मी यू वुड सी द सेवा दल वर्कर्स हु आर सिटिंग ऑन धरना आउटसाइड दैट पुलिस स्टेशन एज वेल, मेकिंग द सिमिलर डिमांड दैट द एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड। एंड मेनी ऑफ द कांग्रेस नेताज आर रीचिंग हियर, बी इट केएल शर्मा ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज द एमपी, ही इज हियर इन सॉलिडारिटी इन सपोर्ट ऑफ राहुल गांधी। दीज आर द सेवा दल वर्कर्स हु आर सिटिंग ऑन धरना राइट ऑन द गेट ऑफ द पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। Guitar is here, so it's also a musical, dharna where they are using all creative methods to say their demand, to reiterate their demand. And with charkha, there's a mini charkha as well, which I'll request Manish to show, that the different methods that the Congress Party workers are using right now in order to lodge their protest, demand FIR into the firing of the pellet guns that happened as per the Congress Party during the 20th July protest. So, and these are the Congress Party workers demanding resignation of the Home Minister. And you had another press conference coming from JP Nadda, a few kilometers away from here in the Lutyens zone as well, the Union Minister saying that LOP Rahul Gandhi is doing politics in name of students. But on the other side, Pooja, the visuals that are coming from the Lutyens zone is also interesting one, because it's not been quite long since we saw Rahul Gandhi on a sit-in dharna right outside Prime Minister's residence for 3 hours.
1: Amit, stay on with me, because the question to ask is, has Rahul Gandhi understood what's clicking with the mass audience when it comes to the issue that he's raising this time compared to, let's say, a lot of other issues he had been raising in the past few months, especially since the 20th July protest? The issues that he's picking up are about youth, Gen Z, and using that to target the Modi government. Srishti Ojha is also on the ground. Srishti, how is the deployment like? Are they letting Rahul Gandhi sit, or are the senior police officers coming to say, you need to move from here? What is the situation like? What are we expecting?
4: Now that Rahul Gandhi has been here outside Parliament Street Police Station, right outside the DCP office, now it started with him coming to this police station to have a conversation with the DCP with one demand: registered an FIR. He had come along with the alleged pellet gun victim Sahil and his family and his lawyer. The demands very simple: registered an FIR as far as the use of pellet gun allegations during the protest are concerned. Now, in that, after that meeting, after he came out, since no FIR was registered, he has been sitting on a dharna right here. If we show our viewers the visuals, he eventually, after some time, we saw Congress workers come outside police station raising slogans, followed by senior Congress leaders, including Priyanka Gandhi Vadra, Jairam Ramesh, and others, Salman Khurshid, come inside the police station. Even the protesters, the workers who were protesting outside the police station, pushed their way through the gate to come inside. As we can see, there are Congress workers here in our visuals. We can see the senior Congress leaders along with Rahul Gandhi still staging their sit-in right here. Earlier, when Rahul Gandhi spoke, he also said that they only have a simple demand. If that's fulfilled, they will leave. Register an FIR. The complaint has already been given. Register an FIR and we leave. So his demand is very simple, and he's made it clear that unless and until that FIR is registered, they are not going to leave from here. They will be sitting outside the DCP office. I also asked if you saw the DCP himself come out and speak to Rahul Gandhi. As far as the meeting, as far as the meeting that happened today. Rahul Gandhi's meeting with the DCP and Joint Commissioner is concerned. What our Delhi police sources have told us is a complaint was given. The complainant in that case is the 19-year-old student Sahil himself. The complaint has been taken by the Delhi police. They have said that they will be transferring it to the crime branch, which is probing the case. And they've also informed
1: Rahul. Srishti, I'll keep coming back to you. And remember, that is where a lot of activity is taking place. But this is Rahul Dharna 2.2, as we are calling it. Amit, Srishti, I'll keep coming back to you. Stay on with me. Because Congress's show of strength is here for all to see. They've congregated their support. They are mentioning the Gen Z, the youth of this country, saying how there was this alleged use of pellet guns by the police or the Rapid Action Force amid the Cockroach Janata Party stir. Once again, leading the charge is Rahul Gandhi himself. Earlier, he was right outside Prime Minister Modi's residence, or PMO residence, PMO basically, and Prime Minister's residence, I correct myself. And this time outside the office of the Deputy Commissioner of Police specifically at Delhi's Parliament Street Police Station. But this is also a busy intersection area. So will Rahul Gandhi and his team be allowed to sit through the evening? Will the traffic be diverted? What happens? We'll wait for the strategy of the police also here. But the protest coming right after Rahul Gandhi alleging refusal by cops to register an FIR on the complaint by student Sahil Lochab, who's about 19 years of age, and where the Congress party is saying, look at this, I've got the victim along. He's suffered pellet gun injuries, is what Rahul Gandhi is claiming, during last month protests. And they've been only demanding education reforms. In turn, there was this force use against them. Rahul Gandhi is alleging that officials told him that orders from above had been issued to not register an FIR in the pellet gun injury case. Referring to Lochab's injuries, Gandhi adding, medical reports show that there are pellets in his body and that Rahul Gandhi will continue to protest till FIR is registered. That is why the dharna is on. According to Delhi police sources, the complaint submitted by Sahil Lochab, who accompanied Rahul Gandhi, has been accepted. Police officials have informed him that the matter is already under consideration before the court.
5: खाकी का समुंदर, एक नीला समुंदर यहाँ पे थाने के भीतर इस तरीके से स्टैंड बाय पर आरएएफ बहुत कम ही रहती है, उनकी टुकड़ी बाहर रहती है, बसों में रहते हैं और ज्यादातर धरना होता है तो सड़कों पर होता है. इस तरीके से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर जिस तरीके से कुर्सी लगा के राहुल गांधी, अब कुर्सी भी दिल्ली पुलिस ने ही दिलाई होगी, कुर्सी लगा के राहुल गांधी और उनके साथ साहिल लोचा बैठ गए हैं. दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया है. ऊपर से तमाम मीडिया जो है वो कवरेज कर रही है, तो एक तरीके से कार्रवाई को लेके जो सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी, ये एक बड़ा दबाव दिल्ली पुलिस पर डाल रहे हैं. और आप देखिए कि बहुत जल्द ही दिल्ली पुलिस ने कहा कि आयोग का ये नंबर है, ये पड़ताल हो रही है, मामला अभी टाइम लगेगा. लेकिन 14-17-2 तारीख को साहिल लोचब जाते हैं, उनको जवाब नहीं मिलता, तो राहुल गांधी को वो ट्रिगर पॉइंट मिल गया कि दिल्ली पुलिस, क्योंकि आरोप उस पर है, राहुल गांधी के मुताबिक दोष उस पर है, इसलिए इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है. और साहिल लोचब की जो स्थिति है, चश्मा पहने बैठे हैं, चोटें उनकी अभी भी नजर आ रही है, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी मोदी सरकार की कार्रवाई पर भी चोट करने की कोशिश.
6: 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट, देख लीजिए इनको अच्छी तरह, देख लीजिए ये, देखिए ये है पैलेट, ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहां लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है, एम्स की एरी जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे. मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं।
4: 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस, दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए, हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि एसएचओ साहब आ रहे हैं, एसएचओ साहब आ रहे हैं। एसएचओ साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप डीसीपी क्राइम ब्रांच आदिपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ,
6: और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं ऊपर से ऑर्डर आया है।
4: पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे डीसीपी क्राइम ब्रांच गए, वहाँ एसीपी उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन, तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है, एफआईआर तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट एलओपी के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला, एफआईआर अभी भी दर्ज।
1: All right, big news that's coming in, and this is with regard to Smriti Irani. Let's go across to the big news coming in about the, and let's listen in directly to her speaking.
7: वो ये कहेगी हम कि उन बच्चों की आवाज बन रहे हैं, उन लोगों की आवाज बन रहे हैं।
8: आपने कहा ना एक वाक्य अंजना जी, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कदम उठाएंगे? यही सत्य है, लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो किस पर आक्रमण कर रहे हैं? देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज पर वो किस पर आक्रमण कर रहे हैं? पुलिस की वर्दी पहनने वाले हमारे महिला पुरुष जितने भी ऑफिसर्स हैं, पुलिस बल है, उस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जैसा कि आपने स्पष्ट रूप से कहा, क्या ये राजनीतिक दल जो कांग्रेस पार्टी है और उनके नेता इस हद तक जाएंगे कि अब लांछन देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज पर लगाएंगे? आपको क्या लगता है अंजना जी, देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज अपनी यूनिफॉर्म क्या इसलिए पहनती है कि वो देश के नागरिक के साथ अन्याय कर सके? ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे देश के इतिहास में। तो जब इन्वेस्टिगेशन वर्तमान में चल रही है तो ऐसी क्या जरूरत है राहुल गांधी को, जब कॉन्ट्रोवर्सी चरम पर है वंदे मातरम की, कि वो आज जाकर वहां बैठे हैं और वो इस विषय पर कितने संजीदा है अंजना जी, वो इस बात से भी दिखाई देता है कि वर्तमान में अगर आप इंटरनेट पर देखें तो राहुल गांधी इस व्यक्ति के साथ बैठकर दूसरे लोगों पर टॉफियां फेंक रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। क्या आपको ये संजीदा राजनीतिक दल के संजीदा नेता का स्वरूप लगता है?
9: लेकिन सरकार मुश्किल में तो घिर गई है क्योंकि अब वो वहां पर बैठ गए हैं और वो हटने को तैयार नहीं है। स्मृति जी,
8: बिल्कुल नहीं। सरकार में मैं सरकार के प्रतिनिधि के नाते आज नहीं बोल रही हूँ, मैं भाजपा के एक कार्यकर्ता के नाते बोल रही हूँ। भाजपा का अधिकृत बयान निश्चित रूप से आपके पास आया है। सरकार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, सरकार ने अपना स्पष्ट रखा है एक मंतव्य, सरकार ने परामर्श करके सारी तहकीकात के लिए जितना समर्थन चाहिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को वो भी व्यवस्था की है। सरकार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है।
9: लेकिन स्मृति ईरानी जी, आपने एक दो शब्द मेरे पकड़े कि राजनीतिक फायदे की बात, मेरा ये अर्थ था कि वहां पर जब वो किसी भाई इंसाफ की बात वो सारे लोग कर रहे हैं जो कि जंतर मंतर पर जिनको लग रहा है उन पर लाठियां चली, जिन पर भी हमला हुआ, वो कह रहे हैं कि भाई
8: राहुल गांधी को कभी दिल्ली पुलिस के ऊपर जो आक्रमण हुआ उनके इंसाफ के लिए बैठते देखा है? आरएफ पर्सनल पर जो हमला हुआ उसके इंसाफ के लिए अपने राहुल गांधी को कभी देखा है? इस घटनाक्रम में कभी भी राहुल गांधी एक वाक्य भी बोले कि दिल्ली पुलिस के पुलिस बल पर आक्रमण नहीं होना चाहिए था, उनका माथा नहीं फोड़ा जाना चाहिए था, एक शब्द बोले?
9: लेकिन स्मृति जी, दिस इज क्लियरली अ टाइम व्हेन एवरीबॉडी इज चूजिंग साइड्स।
8: नो, नॉट एट ऑल। द भारतीय जनता पार्टी इज ऑन द साइड ऑफ द ट्रूथ।
9: ठीक है, एक सवाल,
8: जस्टिस।
9: ठीक है, एक सवाल, एक सवाल।
8: राहुल गांधी चूजेस टू सर्व अ लाइफ फॉर हिज पॉलिटिकल पर्पस, दैट इज हिज राइट।
9: लेकिन देखिए,
8: इन दिस एंटायर इंसिडेंट,
1: Meanwhile, it is the showdown over Vande Mataram that continues to escalate. The national song has now attracted attention and statements from different groups. For example, even from film stars. Veteran actor Sharmila Tagore has joined the debate and she's backing only the first two stanzas of the national song, saying people of different religions reside in India and that it would be difficult for many to say Vande Kali and Vande Durga. BJP MP and actor Kangana Ranaut has jumped on this. She's hitting back at the veteran actor, calling her views limiting and contrived. She told Sharmila Tagore not to reduce a piece of art to religion and gave a call to come out of the Hindu-Muslim binary mindset. But this controversy over the national song intensified after the centre brought a bill, remember, making all the six stanzas, that is the full national song, mandatory to be sung at official state functions. Union Home Minister Amit Shah also came down heavily on the Grand Old Party Congress over this issue, saying the Congress split Vande Mataram and the nation and that they were the ones to sow the seeds of partition, accusing even Rahul Gandhi of pursuing appeasement politics now in 2026. It's basically Congress Chief Mallikarjun Khadge who hit back at Amit Shah and asserting that his party will sing only the first two stanzas of Vande Mataram because that's how it has been sung even by veteran Congress leaders during 1947 and later, accusing the BJP of politicising Vande Mataram.
10: Mera point of view hai ki yahan pe kafi रिलीजन के लोग रहते हैं मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं सिंगल गॉड नॉट मेनी गॉड्स और वंदे मातरम के एक जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली वंदे दुर्गा वंदे मुश्किल है तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टैंजा इज वेरी गुड
1: So this is what Sharmila Tagore has come. In fact, also is from the state of Bengal. And that is the comment that she's made. But it's led to a full-blown political showdown now between the BJP and the Congress. Here's how they've been targeting each other.
11: Desh ke tukde hone ke baad bhi Vande Mataram ko kabhi man se swikara nahi gaya. Jan bhavnao ko dekhte hue संसद में उसका गान तो होता था सब खड़े भी होते थे मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते मित्रों गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और ये ऐतिहासिक निर्णय
12: कट्टरपंथी तत्वों के आगे समझौता करना हमेशा देश के लिए घातक सिद्ध हुआ है और आज कांग्रेस जब कट्टरपंथी तत्वों के आगे उसी प्रकार समर्पण कर रही है यह देश के भविष्य के लिए मैं मानता हूं यह गंभीर खतरे का संकेत है मेरा यह भी मानना है कि कांग्रेस का यह निर्णय सर्वथा असंवैधानिक और निंदनीय है साथ ही राजनीतिक दृष्टि से भविष्य में एक गंभीर संकट को पैदा करने वाला भी है वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है
13: यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर अरे ये तो इनको मालूम नहीं लोग पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए
1: I want to take you back to 2025. That is when in November, Prime Minister Modi, speaking at the launch of the 150-year commemoration of Vande Mataram, said this about the 1937 resolution and how if there were certain verses that were removed deliberately, charging also at the Congress.
14: Vande Mataram se juda ek aur vishay hai, jiski charcha karna utna hi aavashyak hai. Azadi ki ladai mein, वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है।
1: Let me tell you now about the delimitation war that has been unfolding and how. Is it really a north versus south divide in the country? Because the war of words are also between the DMK and the TVK within Tamil Nadu. After Home Minister Amit Shah chaired the Southern Chief Ministers meeting in Mahabalipuram yesterday, where various issues were discussed, including delimitation. But the Dravida Munnetra Kazhagam leaders accusing Chief Minister of changing his stance after meeting Home Minister. Congress MP Karthi Chidambaram raising concerns over what he said was a proposed delimitation exercise, warning that 50% increase in Lok Sabha seats could reduce political influence of the southern states. He has argued that winning five winning Hindi states could potentially be enough to form a government. That means states like Tamil Nadu, Kerala will be outnumbered and will not have a fair representation. DMK MP Dayanidhi Maran calling this shift a U-turn, pointing that earlier statements by Rahul Gandhi termed supporters of delimitation as betrayers of Tamil Nadu. But DMK is also questioning the government's position, alleging that it was the state's interests that have been betrayed following an assembly resolution, no less, on seat representation. After reports emerged of TVK possibly softening its stand from what it appeared, Vijay said, the party though has reaffirmed the state government's unchanged official position on parliamentary delimitation.
15: அமைச்சர் அவர்கள் நேற்று நடந்த தென் மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டில் முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆற்றிய உரை பற்றி பேசினார்கள். கடந்த 12ஆம் தேதி இதே சட்டமன்றத்தில் நாம் ஒரு அனைத்து கட்சி ஒத்துழைப்போடு ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றிருக்கிறோம். அதில் மிக தெளிவாக 543 எம்பி சீட்ஸ், 543 எம்பி சீட்டை அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் அந்த தீர்மானத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு. அந்த தீர்மானத்தை தான் நம்ம நிறைவேற்றிருக்கிறோம். ஆனால் நேற்றைக்கு நடந்த அந்த கூட்டத்தில் முதலமைச்சருடைய உரையில் இந்த 543 எம்பி சீட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு எந்த இடத்துலையுமே இடம்பெறவில்லை என்பதை இந்த அவையினுடைய கவனத்திற்கு நான் எடுத்து வருகின்றேன்.
16: போச்சு வித்தியாசம், இந்த மேட்ச்ல 15 ரன்ல போச்சு. தமிழ்நாட்டுக்கும் யூபிஏக்கும் வித்தியாசம் என்னப்போ? 40 சீட்டு. தமிழ்நாடும் பாண்டிச்சேரியும் சேர்த்தா 40 சீட்டு, உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு 80 சீட்டு. எல்லாருக்கும் 50% கூட்டிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, தமிழ்நாடும் பாண்டிச்சேரியும் சேர்த்து 60 ஆகும், உத்தரப்பிரதேசம் 120 ஆயிடும். 120 பேர் உத்தரப்பிரதேசத்துல வந்து உட்காந்தான்னு வச்சுங்க, எல்லாம் பயில்வான்னே வச்சுக்குவோம், 120 பயில்வான் வந்து உட்காந்தானா, இங்க இருக்கிற 60 பேருக்கு எங்க போறது நம்ம? அவங்க என்ன நாளைக்கே ஒரு உங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சுங்க, முக்காவாசி சட்டத்துக்கு வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி போதும், இந்த 2/3 எல்லாம் தேவையில்லை. நாளைக்கே அவங்க வந்து ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க, டாக்ஸ் டெவல்யூஷனை வந்து டிப்ரெஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸுக்கு மாத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ஏதோ ஒன்று பண்றாங்க, இல்ல இந்திய வந்து கம்பல்சரி ஆகும்னு சொல்றாங்க, எத்தனை என்னவோ சட்டம் எல்லாம் கொண்டு வரலாம். நம்ம வந்து வில் பி அவுட் நம்பர்ட், நம்ம சவுத் இந்தியா வந்து பார்லிமெண்ட்ல இரலவெண்ட் ஆயிடும். வட இந்தியாவில் இருக்கிற 5 ஸ்டேட்டை மட்டும் ஜெயிச்சிங்கன்னா போதும், இந்தியாவே ஆண்டுட்டு போயிடலாம். இந்தி பேசுகின்ற மாநிலம் 5 மட்டும் ஜெயிச்சுட்டா போதும், இந்தியாவே ஆளலாம். தமிழ்நாட்டுக்கு பிரச்சாரத்துக்கே வர வேண்டாம், கேரளாவுக்கு பிரச்சாரத்துக்கே வர வேண்டாம், இதை இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிடலாம்.
17: We like to ask Mr. Rahul Gandhi, who did you call traitor? Are you calling Mr. Vijay, Mr. Tepper? Come on. I would also like to ask the local Congress party, that when your leader said no delimitation, your alliance party chief minister is asking for a fair delimitation. So we like to know that how can the Tamil Nadu chief minister keep changing his stance, because or is, did he get scared after the meet with Mr. Amit Shah? What happened there for him to change his stand. Why did he do a somersault? This is a clear somersault by Mr. Vijay. A big national party came to Tamil Nadu and addressed a press conference and called that whoever supports delimitation in any form from Tamil Nadu, indirectly naming DMK, are traitors of Tamil Nadu. They are called ettappers. And they said the delimitation bill is going to be tabled in the monsoon session and the DMK is going to change its stance. When press approached us, we said that DMK has never changed its stance and the delimitation bill is not going to be tabled in the...
18: ஒரு சிறிய விளக்கம். நேற்று தென்மண்டல முதலமைச்சருடைய மாநாடு நடந்தது. சில ஊடகங்கள், சில பத்திரிகைகள், சில கட்சிகள் டீலிமிட்டேஷன் பில், தொகுதி மறுவரையறை பற்றி ஒரு தவறான ஒரு பிரச்சாரத்தையும் ஒரு கண்ணோட்டத்தையும் உருவாக்கப்பட்டது. முக்கியமாக பத்திரிகைகளில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த தொகுதி மறுவரை தீர்மானம் இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான உறுப்பினர்களுடன் சட்டமன்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அரசின் சார்பாக எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்தோம். அதில் நேற்றில் பரப்பப்பட்ட போலி பிரச்சாரங்கள் தவறானது. நம்மளுடைய டீலிமிட்டேஷனுடைய கொள்கை, தொகுதி மறுவரையுடைய கொள்கை சட்டமன்றத்தில் தீர்மானத்தில் என்ன நிறைவேற்றமோ அரசும் முதலமைச்சரும் அதில் உறுதியாக இருக்கிறார். ஃபேர் டீலிமிட்டேஷன் தேவையில்லை, ஃப்ரீஸ் டீலிமிட்டேஷன் தான் தேவை. 543 உறுப்பினர்கள் கொண்ட அந்த நம்பரை நம்ம ஃப்ரீ செய்யணும், ஒன்றிய அரசு ஃப்ரீ செய்யணும். அடுத்த 25 வருஷங்களுக்கு ஒரு தனி சட்டம் கொண்டு வந்து உருவாக்கணும். இந்த சட்டமன்றத்தில் நம்ம எடுத்த தீர்மானத்தில் மாண்புமிகு முதலமைச்சரும் சரி இந்த அரசும் சரி உறுதியாக இருக்கிறதை இந்த அவையில் நாங்கள் பதிவு செய்கிறோம்.
19: பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர்களுக்கு மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, சதர்ன் கவுன்சில் மீட்டிங்ல இன்டர்ஸ்டேட் இஷ்யூ, சதர்ன் கவுன்சிலிங் மீட்டிங்ல என்ன தேவையோ அது குறித்து மட்டும்தான் அங்கே பேச முடியும். ஏன்னா அது தவிர்த்து பேச முடியும். அது குறித்து நம்மளுடைய கருத்தை அங்கே வலியுறுத்தோம். அதுல என்னென்ன வேற மாதிரியான கோணங்களில் திசை திருப்பி வெளியிடப்பட்டதால் உடனடியாக வெளியே வந்து நான் அப்பவே வந்து பிரஸ் மீட்ல இது எங்க அந்த நிலைப்பாடு குறித்து தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு குறித்து அப்பவே கிளாரிஃபை பண்ணியாச்சு. இது அது கிளாரிஃபை பண்ணி கிட்டத்தட்ட 24 மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு. இந்த தமிழக அரசுடைய நிலைப்பாட்டை அப்பவே கிளாரிஃபை பண்ணியாச்சு.
20: வடக்கிலிருந்து ஒரு பெரும் கட்சியின் தலைவர் வந்து நிருபர்களை பார்த்து டீலிமிட்டேஷனை யார் ஆதரிக்கிறார்களோ, அது குறிப்பாக ஃபேர் டீலிமிட்டேஷன் யார் ஆதரிக்கிறார்களோ அவர் தமிழ்நாட்டின் விரோதி, அவர்கள் ஹெட்டப்பர் என்று கூறிவிட்டு வீரவசனம் பேசிவிட்டு சென்றார். காங்கிரஸ் தோ சொல்கிறது என்று மீண்டும் தமிழக சட்டமன்றத்திலே ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வருகிறார்கள். என்ன தீர்மானம்? அங்கேயும் நாங்கள் டீலிமிட்டேஷன் கூடாது, 543 ஃப்ரீஸ் செய்ய வேண்டும். அதை திமுகவும் ஆதரித்தது. அதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு. அதை நிலைப்பாடு ஆதரித்தோமா? ஆனால் நேற்று இன்றாயிற்று, மாலை இன்றாயிற்று, தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் இங்கு இரண்டு தீர்மானங்களை போட்ட முதல்வர் திரு விஜய் அவர்கள், காங்கிரஸ் பேச்சை கேட்டு கைப்பாவையாக நடந்து கொள்ளும் திரு விஜய் அவர்கள் அமித்ஷாவை பார்த்து ஒன்று நிலைப்பாட்டை மாற்றிவிட்டார். என்ன நிலைப்பாடு? ஃபேர் டீலிமிட்டேஷன்.
1: Right, big news coming in after Telangana Chief Minister Revanth Reddy was denied permission by central government to visit the United States of America. The Ministry of External Affairs has clarified. The MEA has put out a statement and I want to quickly quote from it. The program proposed in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the USA and therefore the clearance was denied. Now, incidentally, the clearance was given for Chief Minister's visit to the United Kingdom, not to the United States of America. So is this purely because of technical grounds or what is being said over it? Let's listen into the MEA spokesperson, Randeep.
21: That the visit of chief ministers, as indeed of other dignitaries, are assessed by the Ministry of External Affairs in order to accord political clearance. The program proposed in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the United States, and therefore the clearance was denied, not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom.
1: Sheer is joining me for the latest on this. Abdul, what has Revanth Reddy said anything on this issue? Has this become a political blame game? And I wonder if they will be convinced with the clarification that is coming from the MEA spokesperson. Abdul Bashir, if you can hear me.
0: Yeah, absolutely. I see that the Chief Minister, his scheduled visit to the United Kingdom and the USA was planned from 20th till 29th. 20th is the night when he traveled to the United Kingdom. And from there, there was a three-day visit. And after that, he was leaving from Boston, New York. Purpose of the visit that he cited was for the new education policy. There were several meetings lined up with the Oxford

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकती। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, और ये ऐतिहासिक निर्णय।

आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से, जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था, और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है,

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: ए यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए।
1: दे वांट टू डाइवर्ट द इश्यू ऑफ पेपर लीक, चंदा चोरी एंड चाइनीज इंकर्शन ऑन अरुणाचल। दीज आर द इश्यू ऑफ द कंट्री नाउडेज। दे वांट टू डाइवर्ट इट, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। वंदे मातरम वी आर डूइंग फॉर द लास्ट 1937 ऑनवर्ड्स, more than 90 years we are doing this. What is new in it for us?

देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, और ये ऐतिहासिक निर्णय।

0: For nearly 13 years, hundreds of birds have flocked to this village in Nidawara village in Punjab. Here, Harpreet Kaur tends to them with love and affection. It's an affair that started by chance.
1: 2013 में मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा बीमार थी तो मैंने देखा कि एक गोरैया का जोड़ा हमारे घर में आया और उनको ब्रीडिंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी तो इसलिए मैंने एक छोटा सा गत्ते का डब्बा लगा दिया तो उस पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया बच्चे निकाले और बच्चों को सारा दिन चुगा देती थी तो मुझे भी सुकून मिलता था.
0: For Harpreet, who longed for a daughter, the birds have become a source of comfort. She recounts how the birds kept her company when she was recovering after her surgery.
1: घर में बहुत ज्यादा रौनकें लगाती थी. सुबह उठते हैं तो बहुत ज्यादा इनका रौनक शुरू हो जाती है. बोलती है, बड़ी मीठी आवाज होती है, इसका कुदरती संगीत होता है. सो मैं सभी दुख सुख इनके साथ ही बातें करती रहती हूँ. सो ये मेरी प्यारियां राजकुमारियां, मैंने बुलाती हूँ, ये मेरी धीया बेटी की कमी इन्होंने पूरी की. बहुत ज्यादा जी, मैं कोई दुख होए चाहे सुख होए, मैं इनके साथ ही शेयर करती
0: हूँ. Currently around 500 birds are visitors to our home. Nearly 200 of them live in nests that dot Harpreet's house. With Rajat Sachdeva, Bureau Report, India Today.
2: Imagine waking up one morning with puffy face, a breakout on your chin, bloating, feeling unusually self-conscious and unhappy. Nothing dramatic has changed overnight. Your hormones have actually. The luteal phase begins after ovulation and lasts until the first day of your next period. Dr. Geeta Jain, our gynecologist on the show today, is going to be telling us, Doctor, what happens exactly inside the body during

0: देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और ये ऐतिहासिक निर्णय।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और ये ऐतिहासिक निर्णय।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.